0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयजशीतला।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 24 जून 2026। सुबह की 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध

0: प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबू धाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना, रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी, संगीत पंडित रविशंकर का। अर्चना कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं पंडित जसराज से ये गणेश वंदना।

पंडित जसराज और साथियों से अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक गणेश वंदना अर्चना कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में संत तुलसीदास जी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अर्चना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में उन्हीं की ये भक्ति रचना।

गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मुरी रंग।

अनुप जलोटा की आवाज में इसी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में यानी 6:30 पर होगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से 6:55 पर। सुबह 7 होगा रोजाना का क्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम का वक्त होगा 7:05। 7:10 से होंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल के।

समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे से 8:15 पर होगा कार्यक्रम लोक संगीत, फिल्म संगीत का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत 8:45 से सुबह 9 बजे से होंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे से 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण सुबह 10:10 से। 11 बजे से होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। शाम 5:02 पर भोपाल केंद्र से होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी संगीत सरिता 5:30 से। छह बजकर 30 मिनट से सदाबहार गीत लोकरंग कार्यक्रम 6:45 से। प्रादेशिक समाचार 7:10 से। 7:20 पर लोकरंग और 7:30 पर भोपाल केंद्र से होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। चित्रपट संगीत रात्रि 8 बजे से संगीत सरिता 8:20 से। समाचार संध्या 8:45 पर और 9 बजे मन चाहे गीत। 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे से दिल्ली केंद्र से दिल्ली से ही अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। तो ये थी जानकारी आज दिन भर के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी सागर है।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

जब से उमा जन्मी तब से ही पिता पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति

को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

एफएम पैंट 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत हैं भूले बिसरे गीत।

0: की हर मौज में अरमानों का जोर है,
1: दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है।
0: ओ लहरें डोले।

0: सारा आलम
1: बेकरार है,
0: ऐसे में क्यों हम
1: दीवाने हो जाए ना।
2: भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओपेरा हाउस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत मजरू का था, संगीत चित्रगुप्त का।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोहनी महिवाल फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद।

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनारकली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है हजरत जयपुरी का, संगीत सी रामचंद्र का है।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं CID फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। गीत जानेसार अख्तर का है, संगीत है OP नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है रोजाना का क्रम सुबह सुबह। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सभी सांसारिक चीजों में परिवर्तन आता है। हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि लोगों की सोच से लेकर उनके व्यवहार तक, अपने आसपास के भूगोल से लेकर तकनीक तक, क्रियाकलापों से लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन तक, ये बदलाव समय के साथ साथ अपनी जगह बनाए जाते हैं। और उसी के साथ देश दुनिया समाज की तस्वीर भी बदलती जाती है। अब वो तस्वीर कितनी सुंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अमुक बदलाव कितने सकारात्मक हैं, और साथ ही इस पर भी कि उन बदलावों की कितनी आवश्यकता है। श्रोताओ, जिस तरह से आवश्यकतानुसार सकारात्मक बदलाव के अभाव में हमारे आसपास की तस्वीर में कोई भी प्रभावशाली परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह कभी कभी मानवीय विसंगतियों से आहत प्रकृति भी इस बदलाव के क्रम को रोक देती है, और हम फिर उस बदली हुई फिजा या कहें कि खुशनुमा मौसम की रोमानियत से महरूम हो जाते हैं। ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि अभी हाल का मौसम बदलाव का मौसम है, और मानसून से जुड़ी वैज्ञानिक भविष्यवाणी यही जाहिर करती है कि प्राकृतिक रूप से मानसून हमें पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं भिगो रहा। हालांकि उम्मीद जरूर की जा रही है कि थोड़ी देर से ही सही, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी बरसेगा। लेकिन फिर भी इससे ये तो इशारा मिल ही गया है कि हमारे ये बदलाव, या कहें कि क्रियाकलाप, विकास के सपने लिए हमारी योजनाएं और उनके परिपालन में, साथ ही एक आम जागरूक और जिम्मेदार शहरी के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो ज़रूर हो रही है। या कहें कि हमने प्राकृतिक रूप से प्रकृति से छेड़छाड़ की है, या उसकी अनदेखी की है। बहरहाल, अब हमें अपनी भूलों को आत्मसात करते हुए, उनसे सीखते हुए उसकी भरपाई के बारे में भी सोचना होगा, तभी भविष्य में समय रहते ये प्राकृतिक मौसमी परिवर्तन हमें रोमांचित करेंगे। श्रोताओं, परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, और इसी नाते प्राकृतिक मौसम भी हमारे प्राकृतिक तौर तरीकों और जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। इस नाते हमें सही और सार्थक सुधारों की तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि आधुनिकता के मापदंड पर भी हम जरूरी बदलावों से वंचित ना रहें। तो इसके लिए एक बेहतर संतुलन के साथ एक सकारात्मक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी, फिर सारे परिवर्तन बहुत ही सुखद होंगे। तब तक हम
झमाझम बारिश का इंतज़ार करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रोजाना का क्रम सुबह सुबह एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: जैसा कि हमारा जो पारंपरिक अन्न हुआ करता था वो हमारा मिलेट या लघु धान हुआ करता था, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सामा, चीना ये वास्तव में पोषण से भरपूर है। रागी एक सूक्ष्म लघु धान है जो प्राकृतिक रूप से जो आदिवासी हमारे क्षेत्र हुआ करते थे वहां उगता था। लेकिन क्या है, फिर इसकी वैरायटी डेवलप हुई। सबसे बड़ा जो रागी का अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, और हैदराबाद में बहुत सारी इसकी प्रजातियां निकली हैं। आप वहां से बीज भी मंगा करके इसका खेती कर सकते हैं। ये खरीफ में उगाया जाता है। खरीफ में इसका जो 2 किलो बीज लगता है एकड़ में, तो उसमें क्या केंचुआ खाद में मिला करके और फिर उसकी अगर बुवाई करें तो प्लांट पॉपुलेशन आपका अच्छा आ जाता है। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे बड़ी जो कुपोषण जो हो रहा है हमारे बच्चों में या महिलाओं में, तो उसमें जो अपना रागी है इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। कि सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है इसमें, आप देखेंगे कि इसमें हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, ऐसा होता है कि स्लो रिलीज होता है। जैसे अपन गेहूं मैदा खाएंगे तो बहुत जल्दी ग्लूकोज लेवल हमारे खून में बढ़ जाता है और हमारे शरीर में इतना इंसुलिन रिलीज नहीं होता कि हम उसको पचा पाए, तो इसी अवस्था को बोलते हैं डायबिटीज। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, मतलब 55 से कम है, जबकि गेहूं का 90-95 तक है। जितने भी हमारे लघु धान है मतलब मिलेट है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो हमारा जो ग्लूटेन फ्री अगर अनाज की बात करें तो इसमें हमारे जो मिलेट है या लघु धान है ये सबसे अच्छे अन्न माने जाते हैं, जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो डिंडोरी मंडला वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा कोदो उधर होता है, और हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में भी है। तो इस तरह से अगर हम कोदो की बात करें तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है और इसकी खेती बड़े आराम से की जा सकती है। मतलब इसमें बहुत सारा डीएपी यूरिया बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो प्राकृतिक खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से इसकी कोदो रागी कुटकी की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा ही हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हम लगाए वो खाएं और जो उगाए वो खाएं और जो खाए वो उगाए, और बहुत अच्छा इसमें स्टार्टअप कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा रोजगार भी मिलेगा। और भारत सरकार द्वारा कई तरह से जो हमारे स्टार्टअप है जैसे इसका जो एग्री स्टार्टअप, उसमें कई तरह से फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। मिलेट का जो आटा है वो निर्यात होता है, आप अच्छी ब्रांडिंग करके अपने यहाँ बुंदेली फ्लोर के नाम से या बुंदेली मिलेट फ्लोर ऐसा कुछ नाम देकर के ब्रांडिंग अपना रजिस्टर करा सकते हैं, और बहुत अच्छा है, इससे आप मुनाफा लाभ ले सकते हैं। 25-30 से ज्यादा नहीं बिकेगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, तो आप 100-150 रुपए किलो तक उसको बेच सकते हैं। सत्तू बना लेंगे 300 रुपए तक बेच लेंगे। अगर हम उससे लड्डू बना लेंगे तो लड्डू हम 400-500 रुपए किलो तक बेच सकते कमा सकते हैं, क्योंकि ज्वार बहुत ज्यादा इसको केयर करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से फसल हो जाती है, और बस हम इसको समय पर इसका जो उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनको अगर हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, इसका हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं।
0: मोटे अनाज फसलों के लाभ, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विशेषज्ञ थे डॉक्टर V.L. साहू। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से होंगे थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत। रास लफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां। 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून। आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देशभर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजाति संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजाति समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
1: सिकल सेल एनीमिया की ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया के सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती उसको बचाने का काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य देश की सांस्कृतिक धारा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने UCC लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। UCC पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.80%, कक्षा 5वीं का 57.70%, कक्षा 10वीं का 66.80% और कक्षा 12वीं का 77.80% रहा है। कक्षा 10वीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्की भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य VIP सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर NOC और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं, हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने अपने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में 100% प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की। नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर शहर में कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदन का निराकरण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीतानंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का था। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई नेपाल पैलेस सागर से। सुनना चाहते थे तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनका परिवार। यहीं से विवेक, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण,

दो रास्ते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। इस गीत की फरमाइश हमसे की थी आप सभी ने सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां नास, तलत जहां फरहत जहां रिफत जहां नाज, सासिया शाहीन नाज और नूरी नाज, खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, दुर्ग छत्तीसगढ़ से अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर दो रास्ते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमसे की है आप सभी ने बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराओं बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान और फैजान मोहम्मद, मुंगीसापुर से मोहम्मद साकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप सभी सुनना चाहते हैं पेंटर बाबू फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। संगीत है उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का।

मनचाही गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बाबू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर सिंह, सीता और गीता, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहरेर और उनका परिवार, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, अकोला से सुशीला देवी मंतुरकर, सतानंद और कुमार गौरव मंतुरकर, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल और निशा। आप सभी की फरमाइश पर बाबू फिल्म का ये गाना

बाबू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

जगजीत सिंह की आवाज़ में सभा सीकरी की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे। संगीत जगजीत सिंह का था। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेहंदी हसन की आवाज़ में मलिक नसीम उल सफ़र की लिखी ये गज़ल।

मलिक नसीम उल जफर की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की आवाज में। संगीत मेहंदी हसन का था। इसके साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी

0: यहीं से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

मुन्नी लाल बरसैया और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैलीबद्ध गणेश वंदना। आइए अब सुनते हैं काशीराम चौरसिया और साथियों से ये देवी गीत।

उर्मिला पांडे की गाय सिव्य विवाह गीत के बाद आइए अब सुनते हैं राम सिंह राय से ये हास्य गीत।

राम सिंह राय के गाए इसी हास्य गीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत है शिव हरि का।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है।

0: जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम कैदी फिल्म का गीत साधना सरगम और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलिंद का।

साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में प्रेम कैदी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेक अप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जब वी मेट इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने से लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन

श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये जवानी है दवानी फिल्म का नाम था। प्रीतम ने संगीत दिया और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन स

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली माँ तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने, और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी, आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस समय लोगों को मानसून का इंतजार है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोयाबीन, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों की बोनी शुरू की जा सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। खरीफ सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए जिले के डबल लॉ खाद भंडारण केंद्र अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे और बोनी का काम प्रभावित नहीं होगा। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। ये सेल कॉलोनाइजर लाइसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर को सौंपी गई है। सेल में राजस्व, नगरीय निकाय, पीएचई, बिजली वितरण कंपनी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी बीच जिला मुख्यालय पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉक्टर शोभा पठड़कर ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मिले सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जन कल्याण की दिशा में खनियाधाना में आयोजित 3 दिवसीय शिविर भी चर्चा में रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12,599 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की गई। साथ ही आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी के माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय फिट इंडिया क्लब शुरू किया गया है। यहाँ आधुनिक जिम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। मॉनसून की तैयारियों के बीच पोहरी में संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को जर्जर भवनों में शैक्षणिक गतिविधियां न चलाने और नदी नालों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में एमएसएमई उद्योगों के विस्तार और उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने लंबित आवासों को जल्द पूरा करने वाली सभी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो जिले में 35वीं एनसीसी बटालियन के शिविर में सीनियर कैडेट्स ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दूसरी ओर मंगलम परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में 215 दिव्यांगजनों को जांच के बाद कृत्रिम हाथ, पैर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई

केंद्र में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 136 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 96 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम जनवन और धरती आभा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खोड़ में जन चौपाल लगाई। उन्होंने बिजली, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। और आखिर में बात योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवपुरी जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। सर, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। छोटे छोटे सवाल है जो पिछले बार भी मैंने आपसे पूछे थे। एक सवाल यह है कि प्री डायबिटीज होती क्या है ये?
3: देखिए, प्री डायबिटीज वो अवस्था है जहाँ पे खाली पेट शुगर आपकी 126 के अंदर रहती है, भरे पेट शुगर आपकी 200 के अंदर रहती है, पर जो ऊपर होने का दायरा होता है खाली पेट शुगर का वो 100 से 110 के ऊपर होती है और 126 के अंदर होती है। तो इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। और भोजन के बाद 140 के ऊपर होती है और 199 के अंदर होती है तो हम इसको डायबिटीज नहीं कहते, इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। HbA1c की जांच आपको सबको मालूम है कि 6.5 और ऊपर हो तो हम डायबिटीज कहते हैं, पर ये 5.7 से 6.4 के बीच की अवस्था होती है। तो ये जो अवस्था है इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, जहाँ पे हम इलाज नहीं करते, पर ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ शोध कहते हैं कि शुरुआती दौर का इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ऊपर की तरफ होता है, जिससे धमनियों में रुकावट, धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों की थिकनेस, कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस, जो एक पैमाना है हार्ट डिजीज का, लकवे का, वो बढ़ने लगता है।
2: अब सर, किसी व्यक्ति की स्थिति प्री डायबिटिक है तो उसे डायबिटिक होने में कितना समय लग सकता है?
3: देखिए, तो निर्भर करता है कि आप जागृत अवस्था में हैं कि सुप्त अवस्था में हैं। जागृत अवस्था में होने पर आप इस अवस्था को सालों साल डायबिटीज में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं। तो ऐसा जगाने वाला काम हम लोग करते हैं। तो अगर आप जागृत अवस्था में आते हैं जिसमें आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं लेते, तो हो सकता है कि सालों साल आपको डायबिटीज ना हो। इसके विपरीत आपको अगर कोई और बीमारी हो गई, आपको भर्ती होना पड़ा, प्रोलॉन्ग एडमिशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, गर्भावस्था आ गई, तो वहां उन परिस्थितियों में हो सकता है कि हमें अपनी शक्तियों का बोध नहीं होगा और डायबिटीज हो जाएगी।
2: सर, ये भर्ती होने वाली बात से बहुत सवाल सबके मन में होता है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति है, थोड़ी बहुत कोई बीमारी अचानक आई है या कोई दुर्घटना घट गई, उसको जब ICU में भर्ती किया जाता है तो उसकी डायबिटीज बहुत ऊपर दिखती है, तो वो डायबिटिक नहीं था, फिर डायबिटीज क्यों बढ़ गई ऊपर?
3: देखिए, आपका जब आप भर्ती होते हैं, बीमार होते हैं, तो बीमारी के कारण भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, जो आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, साइटोकाइन्स होते हैं, जो कि ये सूजन वाली अवस्था में आपके ऊतकों से निकलते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। इन सब का जो गुण होता है वो शुगर बढ़ाने वाला गुण होता है, तो उसको स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो प्रायः ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज नहीं है और स्ट्रेस की अवस्था है, दिल का दौरा पड़ गया है, लकवा लग गया है, तो शुगर इनकी बढ़कर 140 के आसपास आ जाती है।
2: तो फिर ये अस्थायी रूप से बढ़ती है ना?
3: हाँ, ये अस्थायी है।

0: पर हाँ, अगर आप में प्री डायबिटिक स्टेटस है और अस्थायी रूप से बढ़ गई शुगर, हो सकता है बाद में स्थायी हो जाए।
1: सर एक सवाल और भी है, जिनको हिस्ट्री में डायबिटीज है तो क्या उन्हें होगी ही डायबिटीज, कितनी संभावना है?
0: देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो परिवार में आपकी जो परंपराएं हैं, आहार व्यवहार है, आचरण है, वो चलता है। वो दादा से पोते को मिलता है, पोते से उसके बच्चों को मिलता है। तो जो खाने के प्रति स्वीकृति है और कि हम खाते पीते घर के लोग हैं, कम से कम चार रोटी खानी ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाती है। जो खाने पीने का तरीका है, जो उत्सवों में व्यवहार करने का तरीका है, रोजमर्रा में भोजन के अतिरिक्त जो भोजन लेने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। तो उस कारण भी प्रायः जब दादा को डायबिटीज है तो वो आदतें बच्चे में भी रहती हैं, उसको भी डायबिटीज होती है। पर हाँ, जेनेटिक बैकग्राउंड से ज्यादा एपिजेनेटिक्स बोलूंगा कि हाँ, कुछ परिवारों में जीन्स में कहीं ना कहीं ऐसी ये होती है टेंडेंसी कि उनको डायबिटीज हो सकती है। पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका आचरण है, आपका व्यवहार है, जो आपको आपके परिवार से मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको उस भंवर की तरफ लेकर जाता है।
1: श्रोताओं, ऐसे और भी सवाल आपके मन में होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम सर से जरूर बात करेंगे। हमारा नंबर है 8878112343। नंबर फिर से सुन लीजिए 8878112343। अब हम मिलते हैं आपसे अगले बुधवार। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। दीजिए मुझे आज्ञा, स्वीकार कीजिए मनु सक्सेना का नमस्कार।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 10:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए, फोन करें, गीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुन लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते सर,
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
1: जी सर, ग्राम मंजिला से दशरथ वालों
0: का। दशरथ भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा दशरथ भाई, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सर व्यायाम करते हैं।
0: बहुत ही अच्छी
1: बात। जल्दी उठते हैं सर।
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी सर।
0: और खान पान में क्या सावधानी बरतते हैं?
1: जी सर, जैसा मौसम रहता है वैसा खान पान खाते, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो तला उला ज्यादा नहीं खाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तेल से बचना है, कम से कम तेल का इस्तेमाल करें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि शक्कर का भी इस्तेमाल कम से कम करें।
1: जी जी सर।
0: और सेहत के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, सारी चीजें कर सकते हैं आप।
1: जी सर। और जो चाय पीते हैं तो सर गुड़ की भी पी सकते हैं सर।
0: देखिए, गुड़ हो या शक्कर, बात बराबर हो जाती है।
1: जी जी सर।
0: गुड़ में थोड़ा सा आयरन ज्यादा होता है, लेकिन शक्कर के जो गुण हैं वो तो उसमें मौजूद होते ही हैं।
1: जी जी सर।
0: तो कोई ऐसा नहीं कि गुड़ खा रहे हम तो खुश हो जाएं, तो गुड़ भी कम से कम खाएं। तो हमें उम्मीद है दशरथ भाई आप और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे।
1: जी जी।
0: बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: जी सर, फिल्म का नाम है दामिनी।
0: गाने के बोल
1: सर कोई सा भी सुना देना।
0: आइए सुनते हैं दशरथ भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म दामिनी का ये गीत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने मैं
1: जी। हम पंडापुरा से गोपाल भट्ट बोल रहे हैं।
0: गोपाल भट्ट भाई, हमें ये बताएं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं इस मौसम में, जब बरसात आने को होती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर धूप निकल आती है, तो कैसे रखते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान?
1: जी, यही है कि धूप धूप में नहीं निकलते ऐसे समय पे।
0: हाँ हाँ,
1: और खान पान को थोड़ा ध्यान रखते हैं, मठा है,
0: हाँ,
1: दही है,
0: हाँ हाँ,
1: नींबू पानी है, इन चीजों को उपयोग करके और स्वास्थ्य के लाने वो रखते हैं, पानी ज्यादा पीना।
0: बिल्कुल सही करते हैं आप, थोड़ा सा घूमना फिरना भी चालू कर दीजिए आप।
1: हाँ, सुबह जाते हैं सर यहाँ संजय ड्राइव तरफ।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए गोपाल भट्ट भाई, हमें उम्मीद है आप और भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, तो बताएं फरमाइश क्या लेकर आए हैं आप?
1: फरमाइश सर एक शहनाई को है रफी जी की आवाज में, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे।
0: सुनिए गोपाल भाई अपनी फरमाइश पर ये गीत।
1: ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार सर।
2: न झटको जुल्फ से

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका। अपना शुभ नाम बताएं।
1: जय शेखर जी नमस्कार, जय जबलपुर एमपी से अशोक सिंह।
0: अच्छा अशोक भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल ठीक है, बहुत गरीब हूँ इसलिए फोन नहीं लगा सकता आपसे।
0: हर आदमी गरीब है और हर आदमी दिल से अमीर है।
1: जी सर, कैसे तो हैं आप?
0: हम बढ़िया, आपकी दुआएं हैं। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं आजकल इस मौसम में, जब बरसात भी हो रही है, धूप भी निकलती है, क्या कर रहे हैं?
1: स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ताजा खाना खाते हैं और गर्मी से बचने के लिए अपना बचाव रखते हैं।
0: हाँ,
1: पदार्थ पीते हैं, कम पीते, सत्तू वत्तू उनका करते थे सेवन, ककड़ी खीरा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करते हैं आप। और तली भुनी चीजों से बचने की कोशिश करें।
1: जी सर, पर्यावरण बचाने के लिए अगर पेड़ पौधे लगाएं, यही है हमने का नियम है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया
1: जी।
0: तो बताएं अशोक भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: सुना दीजिए, दो दिलों की दास्तान, हमराही मेरे हमराही, सुरेश भाटकर लता जी की आवाज, संजय दत्त फिल्माया।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत है आपका।
0: धन्यवाद सर आपको। आप जयशेखर जी बोल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल। और आप कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। सर ऐतिहासिक नगरी है तो अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरसात के क्या हाल चाल है आपके यहाँ? कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई प्री मानसून की?
0: नहीं सर, अभी से शुरू नहीं हुई है। बादल वगैरह छाए रहते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन अभी गर्मी है।
1: आपके यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन इलाहाबाद बनारस सारनाथ?
0: हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। गर्मी, अरे हम लोग तो गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं शाम को, तो नजारा भी अच्छा होता है, मौसम भी बढ़िया लगता है।
1: क्या बात है, कभी हम भी आके बैठेंगे आपके साथ।
0: सर अगर घाटों में बैठेंगे तो आप उठना भूल जाएंगे।
1: तो बाबू भाई हमें ये बताएं कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं आप?
0: जो अपना रोज का रूटीन है उसमें अपना योग साबित किए हुए हैं। तो अपना 10 मिनट वही करते हैं।
1: हाँ बहुत ही अच्छी बात है।
0: और पैदल चलते हैं 1.5 किलोमीटर तक।
1: बहुत ही बढ़िया,
0: ये रोज का रूटीन है।
1: बढ़िया। और अपने खान पान पर भी ध्यान दें, अच्छा खाएं ताज़ा खाएं।
0: जी सर वो तो सही है, वो तो लगा रहता है।
1: बता दें बाबू भाई गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
0: आज हमको फिल्म जय का सुनवा दीजिए सर।
1: कौन सा?
0: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अब श्रेया घोषाल गाया हुआ है। और सर इजाजत देंगे तो दो लाइनें भी कहना चाहूँगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती। कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। और मेरे जो प्यार से तो कद्र करो यारो, मोहब्बत हर किसी से मेहरबान नहीं होती।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए सुनते हैं बाबू भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म जहर का ये गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
0: जी सर,
1: अपना नाम बताएं।
0: सनी शर्मा।
1: सनी शर्मा। शनि शर्मा कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: गंज बासोदा।
1: अच्छा, गंज बासोदा में क्या करते हैं आप?
0: डेयरी फार्म।
1: बहुत ही बढ़िया। कितने पशु हैं आपके यहाँ?
0: 9-10।
1: अच्छा, मैं ये बताओ सनी, अपने को फिट रखने के लिए क्या करते हो?
0: अपने को फिट रखने के लिए अच्छा खान पान।
1: किस प्रकार का खान पान रखते हो थोड़ा सा बताओ हमें, क्या क्या खाते हो?
0: रोटी सब्जी दूध घी दूध।
1: अच्छा, आपकी खुद की डेयरी है तो दूध तो अच्छा मिल जाता होगा आपको।
0: हाँ।
1: और क्या करते हो फिट रहने के लिए?
0: एक्सरसाइज। अखाड़े जाते।
1: अच्छा, अखाड़े जाते हैं। अखाड़े
0: हाँ।
1: का नाम क्या है आपके?
0: राजेंद्र नगर अखाड़ा।
1: बहुत ही अच्छी बात है सनी भाई, अपने को स्वस्थ रखने के लिए फिट रहें, खूब अच्छा खाना खाएं, अखाड़े जाते हैं आप, ये पुरानी पारंपरिक शारीरिक अभ्यास का एक स्थान होता है। तो बताएं सनी, कौन सा गाना सुनवाए हम आपको?
0: दोस्ताना फिल्म का सुनवा दीजिए।
1: दोस्ताना का कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सलामत रहे दोस्ताना।
1: चलिए ठीक है सनी भाई, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका।
0: जी सर।
1: अपना नाम बताएं।
0: उमा पटेल।
1: उमा कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: टेहरा टेहरी।
1: आपका ये टेहरा टेहरी कहाँ पर है?
0: सागर भोपाल रोड पर।
1: अच्छा अच्छा, उमा क्या करती हैं आप?
0: घर का ही काम करते हैं सर।
1: देखिए, घर का काम करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है। जितना काम महत्वपूर्ण है बाहर खेतों में काम करना, नौकरी में, ऑफिस में, व्यापार दुकान में काम करना, उतना ही अपने घर में काम करना है। अच्छा उमा, हमें ये बताओ अपने आप स्वस्थ कैसे रखती हो आप?
0: थोड़ा खुद पे ध्यान देती हूँ।
1: कैसे कैसे, थोड़ा सा बताओ, जिससे कि आपकी आवाज सुन के दूसरी महिलाएं जो आप जैसे गांव में रहती हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें, आपसे सीख सकें कि उमा इस तरीके से फिट रखती हैं अपने आप को, ऐसे खाना खाती हैं, ये करती हैं, घूमने जाती, क्या करती हैं बताइए आप?
0: जल्दी उठते हैं, घूमने जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, कितने बजे उठ जाती हैं आप?
0: 5 बजे।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। कितना घूम लेती हैं?
0: 8 घंटे।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और खान पान में किस प्रकार का ध्यान रखती हैं आप?
0: बाहर की चीजें कम खाते हैं सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करती हैं आप। और यही बातें बच्चों को बताएं कि बाहर का खाना कम से कम खाएं और पैकेट वाला खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं।
0: जी सर।
1: तो उमा बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: चलते चलते का कोई भी सुना।
1: आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, फोन करेगी सुने में स्वागत है आपका।
8: जी आकाशवाणी सागर फोन करेगी सुने प्रोग्राम। सर मैं गोपालगंज सागर से संदीप रोहिदास बोल रहा हूँ सर।
7: नमस्कार संदीप भाई, क्या हाल चाल है आपके?
8: सर नमस्कार सर, सर मैं ठीक हूँ। और
7: तो संदीप भाई हमें ये बताएं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या गतिविधियाँ और क्या क्या काम करते हैं आप?
8: हाँ सर, जो इस बार का विषय है हेल्थ रिलेटेड इश्यू जो है, जो जिस तरह से अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत तेज गर्मी पड़ रही है।
7: हाँ,
8: तो उस तरह से हम लोग अपने मतलब अपने शरीर का ख्याल रखें, एहतियात बरतें सर।
7: हाँ,
8: और लू में मतलब बाहर ज्यादा धूप ना निकले, ठंडा पानी पीते रहे और भी बहुत सारी बातें सर। जैसे आकाशवाणी से भी स्वास्थ्य परिचर्चाएं और स्वास्थ्य वार्ताएं आती रहती हैं, और इस तरह से रेडियो डॉक्टर इस तरह के ये दे रहे हैं सर, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहे सर। अभी
7: संदीप भाई हमें बताएं गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
8: नाम सर धर्म करम, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल।
7: चलिए संदीप भाई हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म धर्म करम का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे अरुण कुमार जायसवाल, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम का आज का अंक आपने सुना। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें यारातें
2: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है जी। चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों

0: को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम सर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down. Falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down. Falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down. Yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down. Yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down. Fallen down. Fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता

0: पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।

0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
3: देते हैं जवाब

शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से

0: 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा शफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन ने इसे संगीत दिया।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

那么轻轻轻。

చూచు చూచు సింధు బాద్ దీ థైలర్ కు మెర్రన్నా.

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोलका डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जब भी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है। तो हर चीज़ जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी नवारी, बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दी है और कहती हैं कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला हैं। और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफ़ी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात ज़रूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला
पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे, आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के। हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल, जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा। उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौ गजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, इसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फवे फवे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्तु को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए, क्या है ये जो चीजें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज

का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी है उसी को देखकर बनाए। बहुत बढ़िया बात है, यह भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में। और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिला दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कहीं, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही

0: हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब बचकूच बदला हुआ दिखाई देता है। फैशन बदलता है लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विग पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विग पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है। फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी। भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो

में बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं, और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और

हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब ही मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत। आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: लड़की का कोई मॉडल पुराना लगता है,
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाजें अमित कुमार के साथ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरई नाना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

यादव आज शाम भोपाल स्थित रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयवान सिंह पवैया सहित वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षात्मक बैठक भी करेगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कप्तान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में उमरिया स्थित आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आगरमालवा के बड़ौद में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण शिविर में हितग्राहियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग और कैलिपर्स वितरित किए गए। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने पर 8 संस्थानों को सील कर दिया है। और गुना कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आगामी 23 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताज़ा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला

0: रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़

0: की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षाराने मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिल की भागदौड़।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ?
2: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ आचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो आचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपनी टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिख कर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारे सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
2: भी है
1: ना।
2: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
2: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की

0: बाद ही हम बात करते हैं।
1: बहुत ही ज्यादा, यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहाँ थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी,
0: है बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको

0: को एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलगल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और से और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है। कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत
0: ज्यादा लगता है,
1: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा
0: सकते। और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं। कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
1: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ।
0: हाँ।
1: यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते
0: हैं, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है।
1: ना,
0: चलिए तो गीत सुन ले।
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ, तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा अनकेली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती है।
0: और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है, वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी, उसे आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है, हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा, यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि के तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें। और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल

0: मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं, मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां प्रक्रिया भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूँ कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया, मेरा सब

0: सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल तो नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें कि, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
0: कि गाना सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अच्छा, अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गया, थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है, तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल, जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं, और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वहीं एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइनेंस कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइनेंस कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे राम नारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
1: जी। हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
1: जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो,
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो
0: जी। तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
1: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर, तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
2: जी जी।
1: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनीचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनीचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनीचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनीचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्सेक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
2: मंथन करने
1: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
2: क्या बात है। बढ़िया।
1: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
2: जी जी।
1: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
2: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी हैं और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती है?
1: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
2: जी,
1: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो, और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को या उसको। मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
2: क्या बात है।
1: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
2: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
2: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
1: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
2: जी।
1: है।
2: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
1: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
2: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
1: जी।

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि ये हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
0: गजब।
1: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
1: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
0: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
1: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
0: जी।
1: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
0: मौसम फिल्म का गाना है
1: जी। हाँ,
0: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी।

0: और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमैन शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्या हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख कर के मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टा हविज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा कर के कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वनमैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वनमैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
0: जी,
1: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं, मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं, तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
0: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
1: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना
0: जी। तो हम शुभकामना करते

0: क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
1: जी।
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए।

0: के प्रोसेस में है
1: जी,
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए था। तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।
2: फिर मिलोगे कभी

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्निता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी
1: वो।
0: जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो

0: वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो। मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो,
1: जी,
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी,
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी सुनते
0: ये
1: हैं
0: ये वाला सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही उसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
0: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है।
1: वो
0: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश

0: जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। ईरान ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजाति विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। इस समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। और प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त अंशिका शर्मा और आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज़ युवाणी, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं युवाओं की, उनके सपनों की और उनके भविष्य की। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा बहुत ही खास विषय पर है, नई शिक्षा नीति और युवाओं के अवसर। कहते हैं शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, तो वह रोशनी है जो इंसान के सोचने, समझने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। तो आइए इस सफर में हम समझते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रही है और इससे हमें क्या नए अवसर मिल रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता, शिक्षा का मतलब है सोचने की क्षमता, सही निर्णय लेना और जीवन में आत्मनिर्भर बनना। नई शिक्षा नीति इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीख सके। दोस्तों, नई सोच और नए सपनों की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं गीत जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। इसका उद्देश्य एकदम सरल है, जैसे कि रटने की बजाय समझ पर जोर, विषयों की स्वतंत्रता और कौशल आधारित शिक्षा। अब छात्र सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे अपने हुनर के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, लचीला और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। यह विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देती है तथा उन्हें अपनी रुचि के और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी प्रदान करती है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत पारंपरिक 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3

3+4 संरचना लागू की गई है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास विभिन्न चरणों के अनुसार शिक्षा दी जा सके। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता में वो वृद्धि हो। दोस्तों, पहले की शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अब छात्र आर्ट्स के साथ साइंस पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ क्रिएटिव सब्जेक्ट ले सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार करियर बना सकते हैं। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू विषय चयन है। अब छात्र विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी धाराओं तक सीमित नहीं रहेंगे, वे अपनी रुचि के अनुसार अनेक विषयों में से चुन सकेंगे। इससे उनकी रचनात्मकता और कौशल का विकास होगा। इस प्रकार नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों की रुचि, चयन और क्षमता को महत्व देकर उन्हें आत्मनिर्भर, कुशल और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए एक नया दरवाजा खोलती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि क्या अवसर हैं, जैसे कि डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और रिसर्च। शिक्षा में बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं होता दोस्तों, वे सोच में होता है, और इसी सोच को मजबूत करता है यह गीत।

दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि अगर मैंने साइंस और मैथ्स नहीं लिया तो मैं कुछ नहीं बन सकती, लेकिन अब समझ आया कि हर फील्ड में अवसर हैं। नई शिक्षा नीति छात्रों को रटने से निकालकर समझने की ओर ले जाती है। वाकई में दोस्तों, यह एक सकारात्मक बदलाव है। कौशल आधारित शिक्षा अब शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हमारा भारत देश डिजिटल बन रहा है। इससे हम सभी युवाओं को कई अवसर मिल रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन नौकरी के अवसर, फ्रीलैंसिंग और वर्क फ्रॉम होम। जब हम स्किल्स और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मन में एक ऊर्जा और जोश भर जाता है। आइए सुनते हैं गीत

दोस्तों, ग्रामीण युवाओं के लिए भी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अनेक लाभ हैं। नई शिक्षा नीति सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, ये अब गांव के छात्रों के लिए भी है। दोस्तों, अब गांव के छात्रों भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए भी बहुत अवसर हैं। इस नीति से लड़कियों के लिए भी नए रास्ते खुले हैं। वे अब साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। अब इस कार्यक्रम की जानकारी हम एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक छोटे शहर की लड़की ने ऑनलाइन स्किल सीखकर आज खुद का स्टार्टअप शुरू किया। यह दिखाता है कि अगर अवसर मिले तो युवा कुछ भी कर सकते हैं। हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं दोस्तों, जैसे इंटरनेट की कमी, जागरूकता की कमी और संसाधनों की कमी। और इन समस्याओं का समाधान भी है, जैसे डिजिटल शिक्षा का विस्तार, सरकारी सहायता और जागरूकता अभियान। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि नई शिक्षा को बेहतर बनाने का, ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके, जैसे नए कोर्स शुरू करना, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल क्लासरूम। दोस्तों, अवसर मिलना काफ़ी नहीं होता, उन्हें पहचानना भी ज़रूरी होता है। हम युवाओं को चाहिए मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा। नई शिक्षा नीति हमें यह सिखाती है कि हर छात्र खास है, बस उसे सही दिशा की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, आने वाले समय में भारत के युवा ग्लोबल लेवल पर काम करेंगे, नई तकनीक बनाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, नई शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, यह जीवन बदलने का साधन है। नई शिक्षा नीति इसी सोच को मजबूत करती है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर युवा को अपनी प्रतिभा निखारने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। आज 24 जून के इस विशेष दिन पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जा रहे हैं, जो हमें प्रेरणा और सकारात्मक संदेश देते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की भागीदारी और लीडरशिप समाज तथा विश्व को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फेयरी डे भी मनाया जाता है, जो कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और नए सपने देखने की प्रेरणा देता है। नई शिक्षा नीति भी युवाओं में इसी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। आज ही कई देशों में सेंट जॉन्स डे भी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जो संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। इन विशेष अवसरों का संदेश भी यही है कि ज्ञान, रचनात्मकता, सम्मान, अवसर और एकता के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसे भारत की ओर जहां हर युवा अपने सपनों को सच कर सकता है। इस भावना को और मजबूत करता है यह गीत।

तो दोस्तों, आज की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। किताबों से बाहर निकलिए, सपनों को पंख दीजिए और अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति सिर्फ सिस्टम नहीं बदलती, यह आपके सपनों को उड़ान देती है। मैं हूँ आपकी साथी अंशिका शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।

सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता।

ठिकाना है। ये रिश्ते तोड़

जो कुछ है तेरे साथ।

प्रहलाद शिंदे और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये कव्वाली सुनी। कलाम था अख्तर लखनवी और अजीज नाजा का। और आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में आप सुनते हैं इस्माइल।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं जफर हुसैन खान बदायूनी और साथियों की आवाजों में ये सूफी कलाम।

0: ظفر حسین بدایونی اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابھی آپ یہ قوالی سن رہے تھے۔ اس قوالی کے ساتھ ہی کارکرم سنگیت سریتا اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی کے ساگر کیندر سے بول رہے ہیں ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر۔ شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ اب آپ وویدھ بھارتی راشٹری سیوا کے کارکرم آکاشوانی کے ممبئی کیندر سے سنیں گے۔ بس کیجیے کچھ ہی پلوں کا انتظار۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پریانکا اروڑا۔ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स

0: लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गीतकार आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है बैराग।

बड़ी खूबसूरत है तू।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
3: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: कौन लाया, कौन लाया?
5: कार्यक्रम में अगली आवाज है रेमो फर्नांडिस की, नगमा निगार है महबूब और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: साथियों, कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन की आवाज में। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है नदीम श्रावण ने। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम सदाबहार गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं समीर का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है चांद परदेसी का, फिल्म का नाम एक बार चले आओ।

एक बार चले आओ इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ में डीएस सुल्तानिया का लिखा गीत, संगीत चांद परदेसी का, फिल्म का नाम कितने दूर कितने पास।

कितने दूर कितने पास, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। और आइए कार्यक्रम सदाबहार गीत के आखिर में सुनते हैं गजल फिल्म से, ये गजल जो लिखी है साहिर लुधियानवी ने, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का।

लता मंगेशकर की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गजाधर सागर का गाया ये निर्गुण लोक भजन।

0: डॉक्टर गजाधर सागर का गाया ये निगुण लोक भजन अभी आपने सुना। कार्यक्रम लोकरंग में हम लौट कर आते हैं इस अंतराल के बाद।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: कार्यक्रम लोकरंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं आशा तिवारी का गाया ये बुंदेली गीत।

आशा तिवारी की आवाज में अभी आपने ये बारहमासी गीत सुना। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:07 हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने

0: प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग बुंदेली गीतों का ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:20 पर, और शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8:00 हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और रात्रि 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ। आमंत्रित रचनाकार होंगे राघवेंद्र सिंह ठाकुर। मन चाहे गीत फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। कल की सभा में 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री राम चरित मानस का संगीत में पाठ आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह सुबह हमारा ये दैनिक वैचारिक क्रम आप सुनेंगे कल 7:00। 7:20 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत, और 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8:15 पर सुनेगा बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, और 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। फोन करें लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे कल 10:05 पर। सुबह 11:00 सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल शाम 6:00 आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और 6:15 पर सुनेगा बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कल 6:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे ICC महिला 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

आज रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का

का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने आज बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों दलों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके, सोचे और फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सतर्कता का संदेश फैलाने के लिए साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलेगा। साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है। और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, डीप फेक, फेक प्रोफाइल हैकिंग, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और जानकर ही बचाओ।
0: ये प्रदेशव्यापी साइबर जन जागरूकता 15 दिवसीय अभियान 8 जुलाई तक चलेगा। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार इसका प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके तहत आम जनता, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी व ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने आज बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस समिट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक भी प्रदान करेंगे। इस समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र तथा परिधान, अभियांत्रिकी क्षेत्रों के लिए एमएसएमई के लिए बायर सेलर्स मीट का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई प्रदर्शनी व ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: आज ये 15
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजधानी भोपाल में लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाएं। राज्यपाल पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। बैठक में राज्यपाल को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ राजधानी भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारंपरिक रूप से किया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम अचानक बादल घिरने के साथ ही तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमिरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। वहीं हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी निगम कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 30 जून तक विशेष लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में 28 जून से 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। खंडवा के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में कल से 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। झाबुआ के शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में 1 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। नीमच के शासकीय आईटीआई रामपुरा में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की एसीबी शाखा सीहोर ने एसबीआई स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें करीब 75 प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सरदार सिंह यादव का गाया ये श्रृंगार गीत।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: कार्यक्रम लोकरंग में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक का गाया ये श्रृंगार गीत।

चंद्रभूषण पाठक के गाए इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: भैया हरो, बदलत समय में खेती किसानी में भी आधुनिक तरीकन और तकनीकन और उन्नत उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जे तकनीक नावे ना केवल किसानन की लागत कम करबे में मदद करत हैं, बल्कि जल, उर्वरक और अन्य संसाधनन के कुशल उपयोग के संगे उत्पादन एवं लाभ बढ़ावे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो सब कैसे होते हैं, जो आपको पता चल है आज की भेंट वार्ता में, जी को विषय है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका। जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिलीप जाट, और इनसे बातचीत करी है अपनी पुष्पा सिंह गौर जी ने। सो चलो सब मिलके सुनते हैं जब भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों बहनों, सटी कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका। किसान भाइयों, यह विषय कृषक भाइयों को सीधा जोड़ता है। खेत बचाओ, इसका अर्थ भी यही है, लागत बचाओ, मिट्टी बचाओ, पानी बचाओ, फसल बचाओ, और उन्नत उपकरण इसी के चार पहिए हैं। आज विज्ञान ने कृषक भाइयों को आईना दे दिया है, ड्रोन, सेंसर, अब खेत की हर जानकारी किसान भाइयों के हाथ में है। तो आज हम सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दिलीप जाट जी। आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर दिलीप जाट जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए, वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है? किसानों के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
2: जैसा कि ये जून का महीना जो है, ये खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि मंत्रालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से चलाया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में। ये यहाँ प्रमुख मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का यह है कि वैज्ञानिक किसानों तक पहुंचे और किसानों को अलग अलग तकनीकी की जानकारी दे कि किस तरीके से वो अपने खेतों को बचा सके। बचाने से यहाँ आशय यही है कि जैसे निरंतर खेती में अलग अलग प्रकार के हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, एक तरह की फसल कई वर्षों से हम लेते आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ रहा है। आप देखेंगे काफ़ी खाद का उपयोग हम निरंतर करते जा रहे हैं, परंतु उसी के प्रोपोर्शन में हमें उपज प्राप्त नहीं हो रही है। जल संसाधन हमारे पास सीमित है, उसका भी जल का भूस्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपनी खेती को बचाते हुए अच्छे तरीके से हम उत्पादन ले सकें। प्रायः देखा होगा कि जैसे हरित क्रांति के बाद हमारा उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु कहीं ना कहीं हमने मिट्टी की सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी है, कई तरह के खाद का उपयोग हम किए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी है जिनका किसानों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके लिए क्या उन्नत तकनीकियाँ है जिनके उपयोग किसान कर सकें, ताकि आने वाले समय में उनकी खेती जो है निरंतर इसी अवस्था में बनी रहे, वो अधिक से अधिक उपज इससे प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है।
1: जी सर, हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है। अब बात आती है सटीक कृषि क्या है और यह पारंपरिक खेती से किस तरह अलग।
2: जिसे इस पूरे अभियान में अगर देखा जाए तो एक सटीक कृषि जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीक कृषि का यहाँ पर आशय ये है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। खेती में प्रयोग होने वाले जैसे विभिन्न आदान है, जैसे कि हमें खाद की आवश्यकता होती है, हमें बीज की आवश्यकता होती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसका सही मात्रा में, सही समय पर, सही जगह उपयोग, सही तरीके से, ये चार प्रमुख इसके घटक होते हैं सटीक कृषि के। इन चारों का अगर हम पालन करें, जैसे हम बात करें कि खाद की, तो खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फसल के लिए उसकी आवश्यकता कितनी है, किस समय पे हम इसे

0: की मात्रा कम ज़्यादा होती है। तो इस विविधता की जांच करते हुए जहाँ पे कम आवश्यकता है वहाँ पे कम आदानों का उपयोग करें, जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे ज़्यादा का उपयोग करें। तो इस विविधता को देखते हुए उसके अनुसार ही अगर हम इनका अनुप्रयोग करेंगे तो यही सटीक कृषि है।
1: बिल्कुल, हमारे किसान भाई सटीक कृषि क्या है और पारंपरिक खेती से किस तरह अलग है, और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे दी और हमारे किसान भाई समझ भी गए होंगे। अब बात आती है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरण कौन कौन से हैं।
0: सटीक कृषि का जैसे हमने चर्चा की कि इसमें विविधताएं जो हैं उसको हमें पता करना है, तो इसको पता करने की कई वैज्ञानिक तरीके भी हो सकते हैं, परंतु हमें अगर खेत में उसी समय में जिस समय हमें इन संसाधनों का उपयोग करना है, इन आदानों का उपयोग करना है, हमें खाद वहाँ पर डालना है या फिर बुआई करना है, बीज का उपयोग करना है, रसायन का करना है, तो त्वरित हमें जांच कैसे करके हम कैसे पता करें कि सही समय में ये किस मात्रा में हम वहाँ पर डालें इन उर्वरकों को या रसायनों को। तो इनको जांच करने के लिए कई प्रकार की तकनीकियाँ है, जैसे आजकल AI की बात होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इससे आधारित कई तकनीकियाँ होती है जिनका उपयोग करके आप सही समय में, उचित समय में या उसी समय में जिस समय में हमें इस प्रकार के आदानों का खेती में प्रयोग करना है तब हम उनकी जांच कर सके। कई प्रकार के कृषि में सेंसर्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में कई सेंसर से हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी में नमी कितनी है, उसमें किस प्रकार के तत्व है, तो सही समय में ये पता करके हम इनका उपयोग कर सकते हैं। आज ड्रोन आधारित कई तकनीकियाँ है जिससे कि हम फसल के स्वास्थ्य का पता कर सकते हैं, किस प्रकार की उसमें बीमारियां ये हम पता कर सकते हैं, उस क्षेत्र से कितना उत्पादन हम ले सकते हैं इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। साथ ही आजकल रोबोटिक्स और कई नई नई तकनीकियां विकसित होती जा रही है, तो इस प्रकार की तकनीकियां जो है इनका उपयोग खेतों में करना जिससे कि हम अपने खाद की बचत कर सकें, बीज की कर सकें, पानी की कर सकें। तो ये इस प्रकार की कुछ तकनीकियां है सेंसर आधारित, ड्रोन आधारित, जिनका उपयोग हम सटीक कृषि के लिए कर सकते हैं।
1: जी सर, आपका मानना है सटीक कृषि के लिए उन्नत उपकरण बहुत से हैं, हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना है।
0: जी।
1: अब बात आती है जुताई व खेत को तैयार करने के लिए सटीक कृषि यंत्र कौन कौन से हैं।
0: जिसे खेत को तैयार करना या जुताई करना किसी भी फसल को की शुरुआत के लिए एक प्रारंभिक कृषि कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के पारंपरिक यंत्र भी उपलब्ध है, परंतु सटीक कृषि से हमें आवश्यकता है कि सबसे पहले तो वो समतल हो। अगर समतल होगी तो उससे होने वाला उत्पादन भी एक समान होगा तथा पूरे खेत को एक समान रूप से खाद की, बीज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेजर लैंड लेवलर का उपयोग करते हैं। यह एक यंत्र होता है जो कि आपकी खेत को एक समतल रूप में तैयार करता है। इसके लिए लेजर लैंड लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर खेत को तैयार करने के बाद अब हमें आवश्यकता है कि अलग अलग प्रकार के हम टिलेज ऑपरेशन होते हैं जिससे कि हम जो जितने भी खेत में बड़े मिट्टी के ढेले हैं उनको छोटे ढेलों में बदलते हैं जिससे कि बुआई आसानी से की जा सके। तो इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के, जैसे एक स्वचालित ट्रैक्टर का एक ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम होता है, इसकी खासियत यह होती है कि इसको अगर हम ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच करें समान रूप से, क्योंकि ये GPS आधारित एक तकनीक होती है
1: जी।
0: इसका फायदा क्या होगा आप ये देखिए कि जैसे सामान्य अगर ट्रैक्टर को चलाने वाला जो ऑपरेटर है अगर वो एक लाइन में टिलेज करते हुए अगर जाएगा और दोबारा वापस आएगा तो वो कहीं ना कहीं 10-15% हिस्सा ऐसा होगा जिसमें दोबारा ये काम होगा, मतलब ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग को हम ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम के माध्यम से 10-15% की जगह 1-2% पे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक हेक्टेयर खेत में जहाँ पे जितने समय की आवश्यकता हो रही थी, जितने संसाधन हम उपयोग में ला रहे थे, वो 10-15% की वहाँ पे बचत हो जाती है। तो एक ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि एक समान कतारी में बुआई होगी, उसके बाद हमने भूमि को तैयार कर दिया। अभी हम और नवाचार की अगर बात करें तो इसमें हम इस प्रकार की तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं कि खेत में अगर मिट्टी के ढेलों का आकार अलग अलग है तो उसमें चलने वाला एक रोटावेटर एक यंत्र होता है, उसकी गति को हम ढेलों का फोटो, हम सामान्य कैमरा से फोटो लेके रियल टाइम में चलते हुए ही हम रोटावेटर की गति को परिवर्तित करते हैं जिससे कि बड़े ढेलों को वो ज्यादा स्पीड से चल के तोड़ता है, छोटे ढेलों को कम स्पीड से चल के तोड़ेगा। तो इस प्रकार के ये कुछ नवाचार है जो खास करके खेत को तैयार करने के लिए या टिलेज जो हम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं प्राय, उसके लिए इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
1: जी आपका कहना है सर कि सटीक कृषि यंत्र से हमारे किसान भाई जुताई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर सटीक कृषि यंत्र से बुवाई कैसे कर सकते हैं, हमारे किसान भाई बिल्कुल जानने के लिए उत्सुक होंगे।
0: बुवाई अगर हमें सटीक कृषि यंत्रों से करना है तो जैसे कि सटीक कृषि के कुछ प्रमुख हमने बातें की थी कि सही गहराई में बीज का डालना बहुत जरूरी है वह सही मात्रा में, तो इसके लिए न्यूमेटिक प्लांटर एक यंत्र होता है जो कि एक एक बीज को समान दूरी पे समान गहराई में आसान

0: से बुआई की जा सकती है उसके माध्यम से। तो न्यूमेटिक प्रिसीजन प्लांटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कई अन्य तकनीक ऐसे होती है जैसे कि इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर भी एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम बराबर दूरी पे बीजों को हम लगा सकते हैं, क्योंकि सटीक कृषि के अंतर्गत हमें इन संसाधनों का बचाव करना है या इनकी बचत करना है तो यह आवश्यक है कि पौधों की दूरी बराबर हो। तो हम जो भी इन यंत्रों के माध्यम से बुआई करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जैसे कि, तो इसके लिए भी वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर होते हैं। तो इस प्रकार के सटीक यंत्र है जिनके माध्यम से आप बराबर दूरी पे आप बीजों को लगा सकते हैं। इससे बीज की बचत तो होती है, साथ ही साथ सभी पौधों को एक समान जगह मिलती है अच्छा ग्रोथ करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए।
1: जी सर, उर्वरक प्रयोग में सटीक कृषि यंत्रों की भी भूमिका है क्या?
0: जैसे देखते आ रहे हैं कि कई बार उर्वरकों का प्रयोग जो है असंतुलित रूप से हो रहा है, जैसे कि जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हम अधिक उर्वरकों का उपयोग करते जा रहे हैं। नतीजा उसका यह हो रहा है कि हमारी जो भूमि है वो और अधिक कड़क होती जा रही है। प्राय आपने देखा होगा कि पहले हम सिर्फ हल चलाने के बाद अगर बखर चलाते थे तो हमारी जो खेत है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाता था, परंतु आजकल हल बखर चलाने के बाद भी हमें यंत्रों को 4 से 5 बार चलाना पड़ता है, उसके बाद हमें रोटावेटर चलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम जो काम पहले 2 बार में हो रहा था उसको हम 5 से 6 बार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमने इतना खाद का उपयोग किया है कि अब वो मिट्टी उस लायक नहीं बची है कि वो कम से कम संसाधनों से तैयार हो सके। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि उर्वरकों का उचित मात्रा में सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो इसमें सटीक कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन आधारित कई कैमरा होते हैं, इनके माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि पौधों को कितने खाद की आवश्यकता है। एक यंत्र होता है स्पेड मीटर के माध्यम से हम पौधों में क्लोरोफिल कंटेंट का पता कर सकते हैं। अगर ये क्लोरोफिल कंटेंट अगर उसमें अधिक है तो हमें उसको खाद देने की आवश्यकता नहीं है, अगर कम है तो उसमें हमें देने की आवश्यकता है। कितना देने की आवश्यकता है, इस प्रकार के भी कई प्रयोग किए गए हैं जिनके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारा स्पेड की मीटर का माप इतना है तो हमें कितना खाद उसमें देना है। साथ ही कई यंत्र ऐसे इमेज आधारित भी है, NDVI कुछ मीटर भी होते हैं, उनके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं कि हमारी फसल किस अवस्था में है और हमें इसे कितना खाद देना है।
1: जी सर, सटीक कृषि हेतु किस तरह की सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है?
0: सटीक कृषि के अंतर्गत अगर आजकल हम ड्रिप प्रणाली का उपयोग करें या फवारा या स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करें तो इसके माध्यम से कम 30-40% पानी की बचत कर सकते हैं। इसमें एक और तकनीक है सेंसर आधारित। सेंसर जो है वो आपकी जो भी खेत है मिट्टी के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि ये बताता है कि अब आपकी मिट्टी को या आपकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। इससे कुछ और बढ़ के भी सिस्टम है IoT आधारित। आजकल हम सुनते हैं कि AI व IoT का काफी प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, उसी का प्रयोग खेती में भी हुआ है। IoT के माध्यम से आप चाहें तो खेत पर नहीं भी है, अगर आप घर पर भी है तो अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी आप अपने पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो आपको रियल टाइम में ये बताते हैं कि अभी आपकी मिट्टी में नमी कितनी है और इस फसल को अगर आवश्यकता है तो वो ऑटोमेटिक भी ऑन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो तकनीकी है खास करके सिंचाई के लिए ये सटीक कृषि के अंतर्गत, इनका उपयोग किसान भाई अगर करेंगे तो जल की बचत होगी।
1: जी बहुत फायदा भी होगा। सर, फसल कटाई गहाई में सटीक कृषि यंत्र कैसे सहायक हैं?
0: सबसे प्रमुख तो ये होता है कि हमारी फसल कितनी होने वाली है इसका पूर्वानुमान लगाना। तो फसल कटाई और गहाई के लिए फसल की उपज का आकलन करना कुछ समय पहले, तो उसके लिए हमारे पास ड्रोन आधारित तकनीकियां भी है। इसमें कितनी आपकी फसल का उत्पादन होना है तो एक इस तकनीक का उपयोग करेंगे तो आपको एक पूर्वानुमान लग जाएगा। साथ ही बगीचों के लिए भी इस प्रकार की तकनीकी है जहां पे बागान किसान भाइयों के पास है। एक और तकनीक होती है जिसमें कि फसल की यील्ड मॉनिटर करना, ये एक GPS आधारित तकनीक होती है और साथ ही जैसे आपके कंबाइन हार्वेस्टर का हम उपयोग करते हैं फसल को काटने के लिए, तो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे जैसे फसल को काटती जाती है और प्रति वर्ग क्षेत्रफल जो आपका है उससे क्या उत्पादन आता जा रहा है वो रियल टाइम में उसका आकलन करती रहती है। और साथ ही वहां पे एक GPS लगा होता है तो आपको अलग अलग जगह पे ये पता चल जाता है कि हमारा 1 हेक्टेयर या आधा हेक्टेयर की जो भूमि है उसके अलग अलग हिस्से में उत्पादन कितना मिल रहा है। तो ये हमें सहयोग करती है अगली फसल लेने के लिए। तो हम एक मैपिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कम उपज प्राप्त हुई है तो अगले वर्ष या अगली फसल के लिए हम वहाँ पर पहले से प्रबंधन कर सके।
1: जी सर, श्रोताओं बात सीधी है, पुराना जमाना गया, अब खेत बोलेगा, सेंसर बताएगा और ड्रोन करेगा और मुनाफा आपके हाथ में होगा। किसान भाइयों, सटीक खेती करोगे तो खेत भी बचेगा और आय भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कृषक भाई बहनों के लिए ज्ञानवर्धक जानकारी दी, उचित सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया हरो, अब आपने जाने सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों की खेत बचाओ अभियान में भूमिका के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलीप जाट, और इनसे बातचीत करी थी अपनी पुष्पा सिंह और जिज्जी ने। तो आप और अनहेजा जानकारी कैसी लगी हमें अपने पत्रन के माध्यम से जरूर के बताइयो, पतो आप और जानते ही हो। और अब से सुन लेते हैं अनरत लाल बैरसिया के सुरों में जो प्यार और सलोक गीत।

भाइयों बहनों, जैसो के हम आप सब जने जानत हैं कि खेती में समय पे बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई और कटाई के जो काम होते हैं उनको बहुत ही महत्व होते हैं। मानो समय की बचत, लागत में कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी, ये तीन ही बातें हर किसान की प्राथमिकता होते हैं। लेकिन कई बार मजदूरन की कमी, बढ़त भई लागत की वजह से किसानन को कई कठिनाइयों को सामने करना पड़ा थे। और ये बात को ध्यान में रखत भय सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण उप मिशन चलाओ जा रहा है, जिको उद्देश्य है खेती को आसान, कम खर्चीलो और अधिक लाभकारी बनावो। ई के तहत किसानन हे ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप प्लांटर, रीपर, हार्वेस्टर, पावर वीडर और ऐसे करीब अन्य कई आधुनिक कृषि यंत्रन पे सरकार द्वारा निर्धारित नियमन के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराओ जाते हैं, जिसे खेती के काम कम समय पे पूरे होते हैं, उत्पादन लागत घटत है और फसल की उत्पादकता भी बढ़त है। मनो उद्देश्य होते हैं कि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक तकनीक को लाभ उठा पावे। अच्छा, जिन किसानन के लाने व्यक्तिगत रूप से मांगे कृषि यंत्र खरीद वो संभव नहीं हो पात, सो उनके लाने कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक जैसी सुविधाएं सोई उपलब्ध है, जिते से किसान आवश्यकता पर भी पे किराए पे कृषि यंत्र ले सकते हैं। तो अगर आप उन्हें भी ये योजना को लाभ लेवो चाहते हो तो अपने जिला के कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग या पास के कोनो भी किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय से संपर्क कर सकत हो। इसके अलावा योजना से जुड़ी जानकारियां कृषि विभाग की वेबसाइट और संबंधित पोर्टल पे भी उपलब्ध रहते हैं। सो किसान भैया, हम तो जय के हैं कि जब अपन है इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप उन्हें भी आधुनिक कृषि यंत्रण को अपनाओ, खेती को सरल बनाओ और अपनी आय सोई बढ़ाओ है। बाकी मनोरंजन के लाने आपकी ग्राम सभा में लोकगीत है, सो उनको आनंद लो। सो सुनत है राम कुमार प्रजापति और साथियों के सुरों में जो जैविक खेती गीत है।

और अब हम अपने किसान भैया बहनों को खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह सोई दे देवे। भैया रो आगामी मौसम को देखत भय आप और अन्हें सोयाबीन मका और अरहर की उन्नत किस्मन के बीजन की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। उद्यान की फसलन की बात करवे तो उनमें पुष्पन और प्रत्यारोपण अवस्था चल रही है, सो ये देखत भय सलाह दे है कि नए स्थापित बागन में मृत पौधन की जगह स्वस्थ पौधा लगा के गैप फिलिंग जरूर कर लेवे। और अब अपने ढोर बछुन की सोई बात करने लेते हैं तो भैया हरो धूल भरी आंधी गरज चमक बिजली गिरवे के दौरान और ओलावृष्टि के टाइम पे पोल्ट्री शेड की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखवे। गाय बकरियां और नवजात पशुओं को कृमि नाशक तथा बकरियां है पीपीआर रोग से बचावे के लाने टीकाकरण अवश्य करा लेवे। पशुअन है दिन के टाइम पे छायादार जगह पे रखवे, ठंडो और साफ सुथरो पानी पियावे, संगे रोज पर्याप्त हरो चारो खनिज मिश्रण और संतुलित आहार सोई दे रावे, जैसे कि उनकी उत्पादकता भी बनी रावे और स्वास्थ्य अच्छा रवे। तो भैया हरो जाहती आप और इनके लाने खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह। और अब सुने लेते हैं गणपत सिंह यादव और साथियों के सुरों में गाई भैया चेता।

तो भैया हरो जो तो हतो आज को ग्राम सभा कार्यक्रम अब घड़ी की सुइयां इशारों कर रही हैं कि चलवे की बिरिया हो गई है। लेकिन आप है आज को जो कार्यक्रम कैसो लगो जरूर के बताइयो अपनी चिट्ठियन के माध्यम से पत्रन के माध्यम से उसे तो पतो आप और जानते ही हो फिर भी एक बार बताएं देते हैं। ग्राम सभा कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। और अब जावे से पहले काल के कार्यक्रम भी आपको बता दे में काल सवेरे 6:45 पे डॉक्टर मीना यादव से सुने कृषि चर्चा विषय रहे सतत कृषि के विकास में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। और अब सो ग्राम सभा सुनने वाले सभी किसान भैया भौजियों को काकी चचू चाची हरों को और बाकी के सभी श्रोताओं को राधा बहन की एक बार फिर हाथ जोड़ के प्यारी सी मुस्कान के संगे राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में सड़क फिल्म का ये गीत, जो लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

सड़क फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सुनते हैं जुनून फिल्म से ये गीत। शब्द रचना संतोष आनंद की, आवाज़ कुमार सानू की, संगीत नदीम श्रवण का।

जुनून फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशिकी फिल्म से ये दो गाना। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की, अल्फाज समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

आशिकी फिल्म किस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सलमा आगा की आवाज में फिराक गोरखपुरी की लिखी है गजल।

0: सलमा आगा की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। कार्यक्रम संगीत सरिता में हम लौट कर आते हैं इन संदेशों के बाद।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज़। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
0: संगीत सरिता, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अमित खन्ना की लिखी ये गजल सलमा आगा की आवाज में।

सलमा आगा की गाइस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए स्वरचित काव्य पाठ। आमंत्रित रचनाकार हैं राघवेंद्र सिंह ठाकुर।
1: आज के काव्य पाठ में मेरी पहली कविता का शीर्षक है घटाएं। उमड़ घुमड़ आ रही घटा से धरती ने स्वागत बोला, आम्र तरु पर लगी फुदक ने कोयल ने अमृत घोला। ऊपर से गिरती बूंदों को चोट कहीं ना लग जाए, प्रकृति का मानवीकरण देखिए आप। ऊपर से गिरती बूंदों को चोट कहीं ना लग जाए, श्यामल मखमल घास बिछाकर धरती बत्सल जतलाए। तो आजा बादल मेंढक सुर ऐसा बोला, आजा बादल मेंढक सुर ऐसा बोला, उमड़ घुमड़ आ रही घटा से धरती ने स्वागत बोला। झूम झूम तरुवर गाते हैं पत्ते करतल धुन बोले, तो धन्नो बीज को बाहर लाओ, बैलों का हल यूं बोला। उमड़ घुमड़ आ रही घटा से धरती ने स्वागत बोला। और प्रकृति हमें पल पल पर कुछ ना कुछ सिखाती है। एक बहुत अच्छी बात है अगली पद में कि धरती प्यास बुझाकर अपनी शेष नीर ना पास रखे, धरती प्यास बुझाकर अपनी शेष नीर ना पास रखे, जिसको पड़े जरूरत ले जा बहता पानी यही कहे। तो संग्रह का ना भाव प्रकृति में पागल हृदय सही बोला, उमर घुमड़ आ रही घटा से धरती ने स्वागत बोला। अगले कविता का शीर्षक है उमंग। कैसा भी समय रहे हमें उमंग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो साथियों ये समय भी गुजर जाएगा, साथियों ये समय भी गुजर जाएगा, भोर लेकर नया सूर्य फिर आएगा, भोर लेकर नया सूर्य फिर आएगा, साथियों ये समय भी गुजर जाएगा। कि किसका दामन न कांटों में उलझा कहीं, चेहरे ने पीर का दंश झेला कभी, कौन हरदम हंसा कौन रोया नहीं, सीता ने दुख सहा राधा व्याकुल भी हुई, सीता ने दुख सहा राधा व्याकुल भी हुई, तेरा जीवन उजालों से भर जाएगा, साथियों ये समय भी गुजर जाएगा। कि दौर कठिनाइयों का न किसको मिला, जीत से पहले हारा न कोई मिला, नेक कर्मों का किसको मिला है सिला, रीति सदियों से है कर न कोई गिला, रीति सदियों से है कर न कोई गिला, कोई आंचल को खुशबू से भर जाएगा, तेरे आंचल को खुशबू से भर जाएगा, साथियों ये समय भी गुजर जाएगा। कि सबसे सीखो नया सबका कर दो भला, सबके दामन से कांटे हटाओ जरा, सब में देखो खुदा न मानो खुद को खुदा, सब हैं अपने स्वजन तुम न समझो जुदा, सब हैं अपने स्वजन तुम न समझो जुदा, सर हृदय नीर आनंद से भर जाएगा, सर हृदय नीर आनंद से भर जाएगा। साथियों ये

आएगा। अगली कविता का शीर्षक नहीं आऊंगा। जब गलत फहमियां बढ़ जाएं तो एक कवि हृदय अपनी प्रतिक्रिया

विश्वास की डोरी बार बार ना जोड़ सके हूँ, सुनी बात पर करें भरोसा ऐसों को ना मोड़ सके हूँ। तो हर हर बार यही समझाने, हर हर बार यही समझाने, दर पर तेरे नहीं आऊंगा, कौन सही है कौन गलत है ये समझाने नहीं आऊंगा। अगला पद है कि मलखंभों की चिकनाई से, मलखंभों की चिकनाई से डरने वाले भला चढ़े हैं, पतवारों को साहिल पर रख मझधारों में कौन बढ़े हैं। तो चीर समंदर आगे बढ़ना, चीर समंदर आगे बढ़ना यह सिखलाने नहीं आऊंगा, कौन सही और कौन गलत है ये समझाने नहीं आऊंगा। सच्चा मोती तुम ना जाने, कवि की हृदय की अंतिम बात देखिए, सच्चा मोती तुम ना जाने, तुम फरेब में रहे सदा, तो बेखुद हूं पर खुद की कीमत तुम्हें जताने नहीं आऊंगा, कौन सही और कौन गलत है ये समझाने नहीं आऊंगा। और अगला जो गीत मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस गीत का शीर्षक है बिखराव। समाज, राष्ट्र, परिवार में जब बिखराव होते हैं तो एक कवि का हृदय कैसे रोता है कि बिखर गई बाबुल की बगिया, रिश्तों के धागे टूटे, फूलों की क्यारी में निष्ठुर कांटों के अंकुर फूटे, बिखर गई बाबुल की बगिया, रिश्तों के धागे टूटे, कि पिता रहे पिता रहे संग सब कुछ अपना, पिता नहीं

वीणा संग हो गीत मनोहर, वीणा बिन कैसा गाना। टूट गई विश्वास की डोरी, नेह के घट टूटे फूटे, बिखर गई बाबुल की बगिया, रिश्तों के धागे टूटे, कि जिन शाखाओं पर झूले।

प्रेम के सच्चे मोती बिखरे, झूठे लोगों ने लूटे। बिखर गई बाबुल की बगिया, रिश्तों के धागे टूटे। अंतिम पद में कवि की आत्मा की गहराई से जो पीड़ा निकल रही है उसको आप देखिए कि सील रहा ना, सील रहा ना बल का संबल, षड्यंत्रों

टूट गया पागल का अंतस, अब न किसी को कोई खबर। तो अब चरित्र पर, अब चरित्र पर झूठा लाछन लेकर महफिल क्यों बैठे बिखरे।

गई बाबुल की बगिया, रिश्तों के धागे टूटे, फूलों की क्यारी में निष्ठुर कांटों के अंकुर फूटे, बिखर गई।

सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770443

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी।

0: अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा

0: करोड़ आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान